सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: Tanisha.
1: Madhu Sharma ki awaaz mein saanson ki maala pe Mirzapur the movie se only on Radio 106.3 FM. Tanisha. Tanisha aapke saath bindaas mornings lekar aa gayi hu ji main. A very good morning meri jaan. Thursday ka din hai September 24th. Khush to bahut hoge tum hain, saath mein main bhi bahut khush hu because it is weekend aur bahut zarurat thi. Jis tarah se is cold ne mera bura haal kar rakha na is pure hafte mein, I desperately need a day off. Bahut sara steam lene wali hu main so that I get rid of it. It's super annoying yaar. Chalo ye sab baatein to karte rahenge lekin filhal batao kaise ho aap, kal ka din kaisa gaya aapka and aaj kya plan hai, weekend ke kya plans hai, filhal kya kar rahe ho, ek pyara sa good morning to bhej do yaar.
2: Aankh khulli te pata lag gaya main te sapna dekh reha si.
1: सुंदर गाना है ये, मैंने अपने कॉलेज टाइम पर सुना था, तब से लेकर आज तक वो जो टॉप चार्ट्स में है बना ही हुआ है, हटता ही नहीं. अमरिंदर गिल साहब की आवाज की बात अलग है और ये गाने के लिरिक्स भी कुछ कमाल ही है यार. एंड जी एंड देन दिस वन इज आल्सो देयर, रेट्रो का थोड़ा सा तड़का.

0: की नजर में भी प्यार होता है बेटे, जितनी जल्दी होता है ना कभी कभी उतनी जल्दी उतर भी जाता है।
1: भागू भागू मैं भागू तेरी, अब ना जग की है परवाह कोई।
0: एब्सोल्युटली अमेजिंग ट्रैक। और ये दूसरा रेंडिशन जो लेकर आए हैं, पहले वाला जो सीरीज से आया था वो भी सुंदर ही था, एंड दिस वन श्रेया घोषाल ने और ऐड कर दिया, थोड़े से लिरिक्स मॉडिफाई किए हैं, इट्स ब्यूटीफुल यार। तो ये बढ़िया बढ़िया गाने इस पूरे घंटे में आपके लिए लाइंड अप है, ढेर सारी हमने बातें करनी है और भी कमाल कमाल किए, सरप्राइजेस होंगे बीच में, बट फिलहाल 3311063 जल्दी से मैसेज कीजिए, एक प्यार सा गुड मॉर्निंग भेज दीजिए मुझे, और फिलहाल सुनते हैं सुपना इन द वॉइस ऑफ अमरिंदर गिल।

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: तनिषा
1: सोनू निगम की आवाज में स्ट्राइकर मूवी से बहुत सुंदर गाना मतलब खूबसूरत यार. You are listening to Radio All at 106.3 FM. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर और मैसेजेस पढ़ लेते हैं. आइए नाजनी जी कहती हैं विशिंग यू द हैप्पीएस्ट ऑफ मॉर्निंग्स विद लॉट्स ऑफ लव Love, some luck, and the success you want in your life. Good morning. Thank you so much, Nazni ji. Wishing the same for you. Abraj ji ka bhi good morning aaya hai. Saath mein Shashikant Patil ji ka bhi message hai. Kehte hain, good morning. Accept your past without any regret. Deal with your present confidently and let the future unfold fearlessly. Bilkul sahi baat. Itni subah subah words of wisdom jo mil jaate hain na WhatsApp forwards mein. क्रेजी चीज है यार. संदेश जी का मैसेज है ब्यूटी इन द मॉर्निंग मे टुडे ब्रिंग यू क्लोजर टू योर ड्रीम्स एंड मे योर डे बी फिल्ड विद लव एंड लाफ्टर लाइफ इज गुड गॉड ब्लेस यू हरपाल संधु फ्रॉम द कंसिक्रेट जियो बिंदास. थैंक यू सो मच संधु जी. एंड जुल्फी जी का भी मैसेज है यू डू नॉट ऑलवेज नीड अ न्यू लाइफ समटाइम्स यू नीड अ न्यू वे ऑफ सीइंग द वन यू ऑलरेडी हैव. हाँ जी एकदम करेक्ट बात है. कभी कभी ना सिर्फ अपना देखने का नज़रिया बदलने से ना चीज़ें काफ़ी आसान दिखने लगती हैं. हम एक परसेप्शन से देख रहे होते हैं एंड वी जस्ट नीड टू बोरो अ न्यू परस्पेक्टिव फ्रॉम समबडी. इसीलिए कहते हैं कि कोई भी ऐसी स्टक वाली सिचुएशन हो ना उसमें किसी ऐसे इंसान से बात करो जो द पर्सन हु एग्ज्यूट्स पॉजिटिविटी फॉर यू आपके अकॉर्डिंग. ठीक है एंड जिनका पर्सपेक्टिव आपको सेंसिबल लग रहा है आप उससे रिलेट कर पा रहे हो. क्या पता आप जिस सिचुएशन पे इतना ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो सोच रहे हो कि बहुत बड़ा है वो उतना बड़ा है भी नहीं यार. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर क्या बात ये बात है

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: Tanisha.
1: केके और सुनीति चौहान की आवाज में टैक्सी नंबर 911 से एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है, सुना तो मैंने भी है। तनीषा के साथ है आप रेडियो 106.3 एफएम पर, बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर। एंड लेट मी टेल यू, आज ना मैं बहुत एक्साइटेड थी शो करने के लिए, यहाँ आकर आपसे बात करने के लिए। आई मीन एवरी डे होता है वो एक्साइटमेंट, पर आज कुछ एक्स्ट्रा था क्योंकि मुझे पता था देयर वाज दिस ट्रैक इन माय प्लेलिस्ट, वो सुपड़ा जो मैंने अमरिंदर गिल की आवाज में चलाया, एंड आई वाज सो हैप्पी एंड यू नो इतना लुक फॉरवर्ड कर रही थी मैं उसके लिए कि भाई स्टूडियो में ऐसे फुल वॉल्यूम पे ब्लास्ट करके सुनने वाली हूँ मैं वो गाना, मजा आएगा। एंड इट जस्ट मेड माय डे। ऐसी छोटी छोटी चीजें ही होती हैं लाइफ में जो यू नो लाइफ को स्पेशल बनाती है। हम बड़े बड़े लम्हों का इंतजार करते रहते हैं और इन छोटी चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं। नहीं यार, इन पे भी थोड़ा फोकस डालो। और एक चीज़ पढ़ी थी, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल, इट सेज खुद को माफ़ करना सीखो मेरी जान, तुम भी तो पहली बार जी रहे हो, क्यों अपने आप से परफेक्शन की उम्मीद लगा रखी है। इट्स ओके, इंसान है, गलती करके सीखेंगे। एक गलती को दोबारा रिपीट कर रहे हैं जानते हुए भी कि ये गलत है, दैट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक थिंग। बट अगर कुछ छोटी मोटी बात हो गई, यू टुक अ रॉन्ग डिसीजन एंड सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है, यू कैन फिक्स एवरी सिचुएशन यू कम अक्रॉस इन लाइफ। थोड़ा काम होकर सोचने की, उस पर यू नो उसे थॉट देने की जरूरत होती है। That's all. Sending an amazing track your way. Stay tuned and see you.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindaas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: Tanisha.
1: Zulfiyar Farish Shafiq here as we go studio Pakistan say blockbuster absolutely amazing track aur bhai iski making agar nahi dekhi hai to kya dekha hai dekh ke aao ek bar if you haven't Tanisha ke saath hai aap radio 106.3 fm par bindaas mornings chal rahe hain haver guess karo I am not liking it because ye mujhe ab confuse kar raha hai theek hai So right now the temperature is 31 degrees but it feels like 41 degrees. What is this behavior? This is not okay. Also, thodi hawaai bhi chal rahi hai jab main subah uthi. And mujhe aadat hai ki chai ke bina din mera shuru nahi ho pata. I feel ki kuch to left out hai aur I'm lost. So I, went to make tea. Aur jaise hi main room se bahar nikli, thodi hawa chal rahi thi. Aur thodi thandi thi. Matlab, it was not like thandi types. बट जो गर्म हवाएं चल रही होती है ना उससे बेहतर था मेरे दिल में ऐसे उम्मीद जाग गई कि भैया मौसम बढ़िया हो रहा है आज का दिन तो मज़ेदार जाने वाला है दैट टू इट्स अ वीकेंड अभी मैं टेम्परेचर देख रही हूँ इट सेज कि आज का हाईएस्ट 41 जाएगा एंड इट इज़ वेरी हेजी एंड वेरी हॉट ह्यूमिडिटी कम है लेकिन डिहाइड्रेशन हीट स्ट्रोक के चांसेस हैं अगर ज़्यादा देर तक बाहर रहे तो मतलब दिन में ये और परेशान करने वाला है व्हाट इज़ दिस बिहेवियर भाई ऐसे थोड़ी होते हैं आप सुबह कुछ फील करा रहे हो आप दिन में कुछ फील करा देते हो हवा भी थोड़ी चलने वाली है सो ख्याल रखिएगा अपना और प्लीज़ इस कोल्ड से बच के रहिए क्योंकि दुखी कर दिया इसने मुझे जी हाँ एंड आई डोंट वांट यू टू सफर फ्रॉम दिस स्टे ट्यून्ड एंड जियो विद अस
0: रेडियो ऑलिव पर song of the hour. Yeah, guys.

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग आरज तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath Bindas Mornings chal rahe hain. Yahan par Arijit Singh aur Nikita Gandhi ki awaaz mein Yavin Javandi from the movie War 2 aur Qatar mein public auction ho raha hai for impounded vehicles. If you are interested, to zara gaur se suniyega. Ministry of Interior ne announce kiya hai that they will be holding a public auction for impounded vehicles on October 4th. संडे को और इसका जो ड्यूरेशन है ये 2 weeks तक चलने वाला है. टाइमिंग विल बी 3 PM टू 6 PM एंड लोकेशन इज व्हीकल इम्पाउंड यार्ड इंडस्ट्रियल एरिया स्ट्रीट 52. सो व्हीकल का जो इंस्पेक्शन है वो आप कर सकते हैं बिफोर द ऑक्शन 30th September और 1st October को सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक. और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जैसे कि आपको आपका बिडिंग कार्ड लेकर आना पड़ेगा टू पार्टिसिपेट. एंड बिडिंग कार्ड के लिए यू हैव टू डिपॉजिट 3,000 रियाल कैश डिपॉजिट विच इज़ रिफंडेबल बाय द वे वंस यू रिटर्न द बिडिंग कार्ड आफ्टर द एंड ऑफ द ऑक्शन. आपको आपका 3,000 वापस मिल जाएगा. If you win a vehicle, you must pay 20% of the sale price as a non-refundable down payment. और जो बचा हुआ amount है वो within 24 hours आपको pay करना होगा. If you fail to pay in that 24 hours, तो आपका जो down payment आपने दिया है वो भी आपके हाथ से जाएगा. वो वापस नहीं मिलने वाला है. QID साथ रखनी है जब भी आप ऑक्शन के लिए जा रहे हैं. और अगर नाम चेंज करना है डिपॉजिट रिसीट पर तो दैट विल कॉस्ट 200 रियाल और वो फुल पेमेंट के बाद ही पॉसिबल है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू चेक इट आउट. इंस्पेक्शन के लिए आप 30th September और 1st October को जा सकते हैं और ऑक्शन है 4th October को.
2: मैं तो हुआ तेरा साहिबा, मैं तो हुआ तेरा.
1: Beautiful track.
2: Teri jhalak sharfi shivali naina madak barfi.
1: Kya badhiya step tha yaar wo. Koi efforts nahi the us choreography mein.
3: Jaise aap ghar mein
1: aur jaise hum aur weekend.
2: Tere naam to sadke main jaawan tera naam japdi phira.
1: And all these amazing tracks are lined up for you in this hour. Sundariya Radio Olive, Trio Bindas.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबुहमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

लगती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं। सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: Alicia.
1: Alicia. अलीसा मेंडोसा और विशाल दुदलानी की आवाज में अधूरे फ्रॉम द मूवी ब्रेक के बाद तनिषा के साथ है आप रेडियो 106.3 एफएम पर बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर एंड लेट्स टॉक अबाउट कि इस वीकेंड में क्या हो रहा है कतर में. अगर कोई प्लान नहीं है तो यहाँ मैं आपकी मदद कर देती हूँ. सो रन फेस्ट होने वाला है DFC में 25 सितंबर, दैट इज टुमारो मॉर्निंग 7 AM से लेकर 10 AM. और इसका जो एक्सेस है वो आपको टिकट के थ्रू मिलेगा एंड यू कैन गेट दैट टिकट फ्रॉम रन थ्रू कतर ऐप. 60 रियाल का टिकट है इसका. देन अरेबियन गल्फ कप की लाइव स्क्रीनिंग्स हो रही हैं 3-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में Level 7 पे. ये सितंबर 23 से ऑलरेडी चल रहा है अक्टूबर 6 तक और एकदम फ्री एक्सेस है. सो चेकआउट कीजिए. और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और होटल्स में आपको ब्रेकफास्ट बुफे मिल रहा है, फ्री पूल एक्सेस है, वहाँ जा सकते हैं फैमिली के साथ. देन देर इज़ वर्चुअसिटी बैटल ग्राउंड गोइंग ऑन Tekken 8 वर्चुअसिटी DFC में ही 24 से लेकर 25 सितंबर, दैट इज कल तक ही है. ऑल्सो स्टोरी टाइम एट मताफ. सो मताफ लाइब्रेरी में 26 सितंबर को ये होने वाला है 3:30 PM से 5 PM. आप अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं, वहाँ पे स्टोरी टाइम है उनके लिए. बहुत ही अमेजिंग चीजें प्लान है. फुवेरेट काइट बीच इज ऑल्सो देयर फॉर यू. 15 रियाल का टिकट है इसका वाया प्लैटिनम लिस्ट. सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का समय है. अक्टूबर 17 तक ये चलने वाला है. इट स्टार्टेड ऑन सितंबर 9th. और नहीं तो बिंज वॉच कुछ करना है तो मुझे बताओ, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ क्योंकि बड़ी चीजें हैं मेरे पास. संतरे रेडियो जियो बिंदास.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी। सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
4: Calling all visionary brands and business owners. If you create innovative products or services for children, then your biggest stage is ready.
5: Al Sharq Media Management proudly presents the grand third edition of Kids Expo Qatar 2026
4: at QNCC Hall No. 5.
5: This is your ultimate chance to put your brand in the spotlight and connect directly with thousands of families.
4: From breakthrough toys to educational services, showcase your business on Qatar's biggest platform. Opportunities like this don't wait. Book your exhibition space today and take your business to new heights. Kids Expo Qatar 2026, where your innovation meets the future.
6: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

You're listening to Radio Alabama 6.3 FM. Danisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर. और कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पार्ट लिया है डिजिटली अवेयर फैमिली कैंपेन में. सो दिस कैंपेन हैज़ बीन इनिशिएटेड और ऑर्गेनाइज्ड जस्ट टू यू नो प्रमोट सेफर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज अमंग चिल्ड्रन एंड स्टूडेंट्स. और उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है. सो इसके थ्रू बच्चों को अवेयर किया जाएगा यू नो रिगार्डिंग हार्मफुल और थ्रेटनिंग मैसेजेस, शेयरिंग एम्बैरेसिंग फोटोज और वीडियोस विदाउट परमिशन, स्प्रेडिंग रूमर्स और इम्पर्सोनेटिंग समवन ऑनलाइन. राइट नाउ हम जितना ज़्यादा ऑनलाइन दुनिया में जी रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ द किड्स टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थ्रेट्स विच दे आर सराउंडेड बाय. एंड पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा क्योंकि ये जो कैंपेन है इट बेसिकली इंकरेजेस पेरेंट्स की खुल के बात करो अपने बच्चों से उनके ऑनलाइन एक्सपीरियंस के बारे में, उन्हें सही और गलत के बारे में अच्छे से समझाओ सो दैट वो यू नो ऑनलाइन बुलिंग के शिकार ना हो या फिर कैटफिशिंग के शिकार ना हो, स्कैम्स जो हो रहे हैं उसमें ना फंस जाए कहीं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम होम. इनिशिएटिव तो बहुत सारे लोग लेकर आ सकते हैं पर जब तक घर से ये चीज़ें नहीं सिखाई जाएगी, नहीं समझाई जाएगी, मुश्किल होगा बच्चों के लिए अडाप्ट करना. सो इट्स अ रियली अमेजिंग इनिशिएटिव. एंड ऑन दैट नोट, सेंडिंग एन अमेजिंग ट्रैक, स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए।

0: दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: बिंदास
2: रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए

0: Singh. Stay tuned.
1: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
2: Radio Olive, I'm a number one. Abu Hogi, Abu Hogi, Bindas Morning.
3: Malabar Gold and Diamonds, Bindas Morning.
4: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: तनिषा
1: निलांजना घोष की आवाज में मस्कारा फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपकी सात बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर। क्रेजी क्रेजी थियोरीज बनाई थी इस गाने के आसपास एंड शिफारी जरीवाला के बारे में भी। वीकेंड मूड में आ चुके हैं।

0: हां जी, ऑल दीज अमेजिंग ट्रैक्स आर लाइंड अप फॉर यू. फिलहाल वक्त हो चुका है लेम जैम्स का. आज का मेरा सवाल बहुत क्रेजी लेम है. मतलब मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि इट इज एब्सोल्युटली लाइक लेमेस्ट ऑफ लेम क्वेश्चन, और आपको शायद गुस्सा भी आ सकता है इसका जवाब सुन के. फिर भी कोशिश करना तो मेरा फर्ज है. तो ये है मेरी कोशिश. आज का जो सवाल है वो है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ जावा. पहले बता दूं, टेक्निकल सवाल नहीं है, मुझे खुद नहीं पता उसके बारे में. तो मैं आपको एक हिंट दूंगी जिससे आपको डायरेक्शन मिलेगा कि कहां से आपको जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है. व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ जावा, इस सवाल के लिए हिंट है कि ये एक गाना है इमरान हाशमी की मूवी का, और इस गाने में इमरान हाशमी फेरिस व्हील पे लटके हुए हैं. जी, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ जावा बताएं मुझे, सोचे 3311063 पर. हिंट ये है कि इमरान हाशमी की मूवी का गाना है और इस गाने में इमरान हाशमी फेरिस व्हील पे लटके हुए हैं. 3311063.
1: Stay tuned, Andrew Vindas. Cool song. Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. Cool song.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: Denisha.
1: Denisha. Shankar Mahadevan aur Sukhinder Singh ki awaaz mein naturally only on Radio 106.3 FM. Denisha aapke saath. Bindaas mornings chal rahe hain ab.
2: Lame jams.
1: So as I said, ki lame jams ka aaj ka sawal katai lame hai. Aur sawal ye tha ki what are the three types of Java? And the hint was ki it is a Imran Hashmi song. And us gaane mein wo Ferris wheel pe latke hue hain. ठीक है, सो आई हैव गॉट आंसर्स ओवर हियर. बहुत कम लोग गेस कर पाए हैं. सबसे पहले गेस किया है योगिनी ने एंड शी गेस्ड इट राइट. बाकी एक मुझे करेक्ट आंसर आया है केके का. देन देयर इज अनदर वन श्री. बाकी सबके गेसेस गलत है और थोड़े टेक्निकल हो गए हैं दोस्तों.
3: मर जावा जावा मर जावा मिट जावा मर जावा.
1: यस, मर जावा मिट जावा मर जावा. These are the three Javas. I know. सुनके आप लोगों को मुझ पे गुस्सा आ रहा होगा. I absolutely understand that. इसीलिए एक बढ़िया गाना लाइनअप करके रखा है so that मैं बच जाऊँ उससे. शफकत अरमान दिली साहब की आवाज में दिलदारा फ्रॉम द मूवी रावण. स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास.

0: सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
1: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
2: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24-27 सितंबर नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
3: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे निशा को बिंदास मॉर्निंग में।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: हाय एवरीवन, मैं हूँ अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: Tanisha.
1: You are listening to Radio Ala 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas mornings chal rahe hain ab.
2: Wacky wisdom.
1: में आज हम बात करेंगे synchronicity की. So, कुछ इवेंट्स होते हैं लाइफ में जो कि बहुत ही वाइल्ड होते हैं. इनिशियली हम उन्हें कोइंसिडेंस समझते हैं, देन व्हेन वी पुट द पीसेस टुगेदर तो हमें रियलाइज होता है कि नहीं, दिस वाज मेंट टू बी, दिस वाज सपोज्ड टू हैपन, हाउ इट हैज हैपेंड. सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी. 1973 में एंथनी हॉपकिंस नाम के एक एक्टर थे, उनको एक मूवी मिली और वो मूवी बेस्ड थी एक बुक पे. द बुक का नाम था द गर्ल फ्रॉम पेट्रोवका. नाउ ही वॉज सर्चिंग फॉर द बुक कि मैं पहले पढ़ता हूँ, लेट मी यू नो गेट द जिस्ट ऑफ इट सो दैट आई कैन बी इन द कैरेक्टर प्रॉपरली. उन्होंने पूरा एक दिन लगा दिया लंदन में, हर लाइब्रेरी में गए, उनको वो बुक कहीं नहीं मिली, सब जगह सोल्ड आउट, नॉट अवेलेबल. देन गिव अप करके फाइनली ही वॉज सिटिंग एट अ ट्रेन स्टेशन वेटिंग फॉर हिज ट्रेन एंड वो एक बेंच पे जाकर बैठे. He is sitting on the bench and he looks next to him. वहाँ पे उनको मिलती है वो book, The Girl from Petrovka. Abandoned. कोई नहीं है आसपास जिसकी वो book हो. He gets thrilled and he just takes the book. और फिर उसके बाद एक साल बाद जब वो author से मिलते हैं तो वो author को बताते हैं कि किस तरह से उन्हें ये book मिली and how difficult it was for him to get hands on this book. वो जो author है वो बताते हैं कि I also lost my book years ago और उसमें तो मैंने अपने handwritten notes भी लिख के रखे थे जो मेरी copy थी उसमें. And उसी वक्त Anthony अपनी जो copy है जो book उन्हें वहाँ station पे मिली थी वो निकाल के दिखाते हैं. It was actually the author's book. Yes, with his handwritten notes in the margin. और कार्ल यंग ने इसे नाम दिया है सिंक्रोनिसिटी. कुछ मोमेंट्स जिंदगी में जो इनिशियली हमें लगता है कि इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, बट इवेंचुअली वी फाइंड आउट कि भाई उनका बहुत ज्यादा डीपर मीनिंग था फॉर अस. वी जस्ट डिड नॉट रियलाइज एट दैट टाइम और वी वर नॉट एक्सपोज टू दैट डीपर मीनिंग एट दैट टाइम. And it is absolutely crazy, right? किस तरह से चीज़ें planned हैं और किस तरह से you know the entire roadmap is laid out there, पर हमें पता नहीं है, हम बस चलते जा रहे हैं. फिर एक दिन कभी मुड़ के देखते हैं, फिर realize होती है कि अच्छा, connecting the dots. And it's absolutely beautiful and very interesting, यार. On that note, sending Jab Talak from the movie Cocktail 2. Stay tuned and Jio Bindas.

0: मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबुहमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: Tanisha.
1: Y'all listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas mornings chal raha hai yahan par. And let's talk about scam which has happened on Twitter. Hum sab so rahe the, hume pata bhi nahi chala. Aur ek banda aaya, Jay Singh Rathore naam ka. Theek hai. He posted on Twitter that Twitter or X, whatever you want to say, ki main, meri jo behen hai, usko eye surgery ki zarurat hai. So I need help from you people. Please help me. Genuine laga logo ko. और वहाँ पे सबने यू नो डोनेशंस देने स्टार्ट कर दिए और डोनेशन ले लेके उसने 1.35 लाख और सम अमाउंट कलेक्ट कर लिया विद इन दैट वन नाइट. ओके, और फिर सुबह तक पता चला लोगों को कि अरे ये तो स्कैम हो गया है, ये तो फ्रॉड है, ये तो जेन्युइन है ही नहीं. तो व्हाट वुड अ पर्सन डू जो स्कैम कर रहा है लोगों को, वो छुप जाएगा, यू नो, वो पैसा जिस भी तरह से हो सके निकाल के कहीं भाग जाएगा, अंडरग्राउंड हो जाएगा. पर नहीं, जय सिंह राठौर अलग बंदा है भाई. उसने ट्विटर पे स्पेस ऑर्गेनाइज किया, सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ चैट रूम, और वो जिन लोगों को ठगा है उसने उन सबसे चैट कर रहा है वहां पे. खुले हाँ मस्त एकदम, कि मैंने तो आपको बताया था मेरे घर पे कंडीशन है, अब क्या कंडीशन है वो थोड़ा सा मैंने ऐसे गलत बोल दिया, पर कोई बात नहीं, कंडीशन तो है ना. तो लोग बोल रहे नहीं नहीं हमारे पैसे वापस करो तुम, ये कोई बात नहीं होती. वो मस्त कहीं टपरी में बैठ के चाय पी रहा है, ही इज ऑर्डरिंग चाय, लाइक ही इज लाइव टॉकिंग टू पीपल देयर ऑन द स्पेस. बट वहाँ बोल रहा भैया एक चाय लेकर आना, इधर एक बंदर हो रहा है, प्लीज मेरे पैसे वापस कर दे. व्हाट इज दिस बिहेवियर, ही डज नॉट केयर. Then, और फिर जब लोग कह रहे हैं ना कि हमारे पैसे वापस करो, तो कहते हैं अगर मैं गूगल पे से करूंगा तो क्या मुझे कैशबैक मिलेगा. मतलब फुल कॉमेडी चल रही है यार, यू कांट इवन फील दैट इट इज रियल, क्योंकि इतनी नॉनसेंस बातें हो रही है वहां पे. देन अ पर्सन सेड कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इस तरह से स्कैम कर रहे हो लोगों को, फ्रॉड कर रहे हो लोगों के साथ, धोखा दे रहे हो उन्हें, और किस किस तरह से तुम लोगों को लूटते हो. तो कहता है कि भैया मेरा फर्स्ट टाइम है, तो ये मेरा पहला ही एक्सपीरियंस है, अब आगे देखते हैं. व्हाट I mean, the entire situation, how it has turned out, has become so funny, but it is so disheartening, you know. Apna paisa, jo aapne ni mehnat se kamaya hai, you gave it for a good deed. Turned out that good deed does not even exist. It's really hurtful, and I hope all those people get their money back. And this guy, Jay Singh Rathore, I don't know what to say about him. अल्फाज डेफिनेटली नहीं है, पर तारीफ तो मुझे नहीं ही करनी है इसकी भाई.
2: क्या बोलती तू?
3: ए, क्या मैं बोलूं?
1: मैं बता दी हूँ यार,

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
2: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
3: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं, आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलु एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग, ज्यादा सेविंग्स।
4: लुलु, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
5: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। जियो बिंदास।
6: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
7: रेडियो ऑलिव नंबर वन।
8: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
9: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: Tanisha.
1: You are listening to Radio Ala 106.3 FM. Tanisha, aap ke saath bindaas mornings chal raha hai. Yahan par, aur bhai, GCC is working towards a unified rule for vehicles, passengers and goods travelling by road between member countries. Aur ye jo hai, kaafi cheeze aasan kar dega. So, Qatar ke cabinet ne approve kar diya hai a draft law for unified international land transport system between GCC countries. Ab ye jo draft law hai, ye Shura Council ko refer kiya jayega. Qatar ki Ministry of Transport ne se prepare kiya hai aur jo main aim hai iska, wo ye hai ki aur consistent aur you know easier procedure for international road transport across GCC countries. The system will cover movement of passengers and goods by land between GCC states and इससे रोड सेफ्टी इंप्रूव होगी ऑब्वियसली और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स जो है वो भी और आसान हो जाएगा पैसेंजर मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा एंड इट विल स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इंटीग्रेशन और जो क्रॉस बॉर्डर लैंड ट्रांसपोर्ट है उसे और भी स्मूथ और एफिशिएंट बना देगा काफी जबरदस्त इनिशिएटिव है एंड ऑन दैट नोट सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: फॉर्मल शर्ट लेने का प्लान है और चाहिए प्रीमियम ब्रांड
2: तो नेस्टोग्राफा में मिल रहा है जबरदस्त ऑफर दो शर्ट सिर्फ 59 रियाल में या चार शर्ट जस्ट 99 रियाल में और हाँ जहाँ एक शर्ट के लिए आपको 59 रियाल देना पड़ता है वहीं चार शर्ट्स अब सिर्फ 99 रियाल में ओनली विद गराफा शॉपिंग डेज
1: तो इस वीकेंड अकेले मत जाना अपने फ्रेंड्स को भी साथ ले जाना नेस्टो हाइपरमार्केट गराफा
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में

0: तनिशा।
1: सेल्फी ले रही थी और ये गाना आ गया बड़ा अच्छा लगा मुझे, ऐसे खुद को कुछ कर लेना चाहिए। You're listening to Radio LM 106.3 FM, तनिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर। और भाई फॉलो कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो, radioalm.qa इज द हैंडल सोशल मीडिया पर, क्योंकि कॉन्टेस्ट वगैरह चल रहे होते हैं, मिस आउट कर जाओगे फिर कहना नहीं कि बताया नहीं था। ऑल्सो अपने दोस्त भाई बंधु सबको बता दो, कहीं भी किसी भी कोने में हो दुनिया के, रेडियो ऑलिव आपके साथ हमेशा रहेगा। बस आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, रेडियो ऑलिव की ऐप है, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और फिर कहीं से भी हमें लाइव सुन सकते हैं आप, एकदम इजी पीजी। अरे हमेशा आपके साथ बने रहने का वादा यूं ही थोड़ी किया हुआ है, वी फॉलो ऑन दैट, ठीक है। एंड इफ देयर इज एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर, तो यहाँ सिर्फ बात करने के लिए या सुनाने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी बैठे हैं मेरी जान। सो 3311 1063 पर आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं 4444 1063 पर। सेंडिंग ए बच्चू फॉर यू फ्रॉम द मूवी गजरी, स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास।

0: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं। सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

0: Danisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Danisha, aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par. Aur waqt ho gaya mere jaane ka, meri jaan. Ab hum milenge Sunday ko subah 6 baje. Aapne kya karna hai aapko pata hai na? Apna khayal rakhna hai aur ekdam badhiya sa weekend aapne batana hai. Bilkul stress nahi lena hai kaam waam ka. Wo hum weekdays ke liye rakhenge, theek hai? Weekend pe hame chill karna hai, khud ko refresh karna hai, you know, re-energize karna hai. Bahut zarurat hai uski, kyunki fir dobara us loop pe jana bhi to hai na hafte mein. So please take this time for yourself, for your family, for your friends. खुद के साथ वक्त बिताने के लिए, ओके? डू समथिंग यू लाइक टू डू. इट्स वेरी गुड इफ यू लाइक द वर्क यू आर डूइंग, बट यू नो, अ हॉबी, उसके लिए कभी ना कभी वक्त निकालना चाहिए. सो दैट कीप्स द स्पिरिट अलाइव, ठीक है? डू दैट फॉर योरसेल्फ और एकदम मस्त वीकेंड हो आपका. मिलते हैं आपसे संडे को. हैव एन अमेजिंग डे एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ऑल एंड थ्री बिंदास. सुनो, भूलना मत, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, ओके?

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद

कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। हाँ जी, आपकी कशिश आ चुकी है आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। एंड देखिए यार, वीकेंड आ चुका है। इस वीकेंड तो मुझे पता ही नहीं चला, देखो कि यार वीकेंड कैसे ही आ गया, क्योंकि जो है पिछला वीकेंड जो है वो पूरा जो है सफाई करने में निकल गया था, एंड ये वाला वीकेंड जैसे जैसे आया मेरी तबीयत खराब होती गई। एंड दवाई जो है जब आप खाते हो तो आपको कहाँ पे जो है समझ आता है कि यार कैसे दिन हो रही है, कैसे सुबह हो रहा है। मतलब मुझे तो जो है पूरे टाइम ही ऐसा लगता है कि मैं किसी कमरे में बंद हूँ, भले ही बाहर होती हूँ तो भी ऐसी फील होता है, बिकॉज सर्दी हो रखी है ना इस वक्त। वैसे देखिए मौसम बहुत बदल रहा है, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मौसम के बारे में बात जो है वो अभी करेंगे, क्योंकि आज तो वीकेंड है, बहुत सारी फन फॉलिंग मस्ती और मजे वाली बातें जो है वो हम करने वाले हैं। आपका वीकेंड का प्लान जो है वो भी जानेंगे, एंड आपका प्लान बनाएंगे भी अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है फुल वॉल्यूम में जो है अमेजिंग वाले गाने इंजॉय करना चाहिए, इसलिए विशाल मिश्रा की आवाज में हमारा अगला गाना आ रहा है। सो आवाज बढ़ा के इंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jio
1: Bindas. Time check. Brought to you by Nanatal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:13, दैट इज 10:13. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
3: रेडी
4: टू लर्न,
3: टू प्ले, टू ग्रो.
5: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ. ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस.
6: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ. रेडियो 106.3 जियो बिंदास.
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: बहुत ही बढ़िया वाला गाना जो है आपने इंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफ पर। और देखिए यार, कल हमने जो है बारिश की थोड़ी बहुत बातचीत कर ली थी कि हाँ यार ऑटम में जो है हम प्रवेश कर चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, तो हो सकता है हल्की फुल्की बारिश होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीगी साड़ी वाले गाने जो है वो आप जो है इमेजिन करने लग जाएं कतर में। या हम सिर्फ आपको जो है अच्छा फील कराने के लिए चलाते हैं गाने कि आपको थोड़ा सा ऐसे लगता रहेगी यार हाँ बारिश आएगी, कभी ना कभी तो आएगी। वैसे आज जो है मौसम ने वापस करवट ली है एंड हाईएस्ट टेम्परेचर वापस 40 के पार पहुंच चुका है, 40 मतलब 40, एंड आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस है, लोएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है। इस वक्त का टेम्परेचर जो है दोहा में हो रहा है 37 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, मौसम का क्या है, ये बदलता रहता है बिल्कुल हमारे मूड की तरह। जैसे मैं जब सुबह आई थी तो मेरा मूड बहुत अच्छा था, लेकिन फिर ऑफिस आने के बाद मेरा मूड जो है थोड़ा सा लो हो गया, एंड मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों से बात करने के बाद वापस लो हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ और अच्छे लोगों से बात करने के बाद बढ़िया हो जाएगा। एंड आप लोगों से बात कर रही हूँ तो फिर तो देखो बढ़िया होना बनता ही है। वैसे आप लोग अगर मुझे इस वक्त मौसम जो है बाहर का कैसा हो रहा है, कुछ एस्थेटिक सी फोटोज अगर खींच के मुझे भेज देंगे, सड़कों की, पेड़ पौधों की, या आसमान की, या आप जो खा रहे हो उसकी, सो मुझे जो है थोड़ा इंटरैक्टिव सा महसूस होगा। 3311063 पर आप अपनी प्यारी प्यारी फोटोज जो है वो मुझे भेज सकते हैं। फिलहाल जो है यही कूल बात करते हुए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आपको सुना रही हूं मैं, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ ही गाने इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
2: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
3: अरे लुलू का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलू का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलू एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलू एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स।
4: लुलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
5: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-561-23.

0: अगर मैं कहूँ वो जो है मिल गई है और वो है आपकी कशिश, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से बोला था कि यार जरा मुझे बताओ कि आप लोग इस वक्त क्या कर रहे हो एंड क्या कुछ आपकी जो है प्लानिंग चल रही है एंड कुछ फोटोज भेज दो यार, वीडियो भेज दो। तो अबरार जी ने एक बहुत ही प्यारी सी फोटो भेजी है एंड थैंक यू सो मच अबरार जी। एंड आसमा जी ने मुझे एक प्यारी सी वीडियो भेजी है। एंड देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो है बचपन में भले ही कितना भी मजाक उड़ा लेना वो गुड मॉर्निंग पोस्ट का जो ग्रुप में आते हैं, लेकिन बड़े होते होते आपको कहीं ना कहीं उससे फ़र्क पड़ने लग जाता है। मुझे तो बहुत पड़ता है जब आसमा जी जो है अपनी प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग मुझे भेजती है, तो सच में ऐसा लगता है कि हाँ यार, दिस मॉर्निंग इज़ वर्थ लाइक सेइंग गुड मॉर्निंग। सो अभी अभी फ़िलहाल मुझे एक और मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग का। वालेकुम अस्सलाम, इदरीस जी ने जो है गुड मॉर्निंग कहा है। सो इदरीस जी थैंक यू सो मच। आसमा जी का भी थैंक यू आ गया, थैंक यू। तो आसमा जी, मुझे आपको कहना चाहिए यार, अब देखिए अगर आप लोग जो है जो भी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त और आपने अभी तक मुझे कोई फोटो नहीं भेजी है, तो यार क्या कर रहे हो यार, बस एक हाय हेलो गुड मॉर्निंग भेजो, या फिर अगर आप सिग्नल पे खड़े हो तो फोटो खींच के भेज दो, पार्क कर रहे हो अपनी कार तो एक फोटो भेज दो। एक फोटो भेजने में यार देखो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वक्त लगता है। सो जल्दी से मुझे प्यारी प्यारी फोटोज जो है वो भेज दीजिए। बाकी थोड़ी सी देर में हम जो है एक ऐसे वर्कआउट रूटीन की बात करने वाले हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है एंड मेरा तो पूरा एल्गोरिथम मुझे उसी वर्कआउट रूटीन के बारे में बता रहा है। सो मैं वो भी आपसे शेयर करूंगी अगर आप वो अभी कर रहे हैं। सो मुझे बताइएगा कि क्या ये असर करता है और क्या ये बाकी जिम से आसान है, क्योंकि देखो सोशल मीडिया तो यही क्लेम कर रहा है। वैसे किल दिल मूवी से अमेजिंग वाला ट्रैक सच दे आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में। एंड बाकी फोटोज भेजने वालों कंटिन्यू भेजते रहो, मैं हूँ आपकी कशिश, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रब

टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिफेयर. मैं हूँ आपकी कशिश. हाँ जी, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ. वैसे आप लोगों ने मेरी लाइफ जो है वो असल में मस्त बना दी है, क्योंकि आप लोग प्यारी प्यारी फोटोज जो भेज रहे हो मुझे. सो सबसे पहले तो अहमद जी ने जो है मुझे मैसेज भेजा, अपनी सेल्फी भेजी और लिखा है अभी तक सीन नहीं किया. अरे गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? भारी जब मेरी बोलने की बारी आएगी मैं तभी तो बोलूंगी, गुस्सा ही हो गया यार ये तो. सो थैंक यू सो मच अहमद जी. एंड इसके बाद जो है श्रीनिवास जी ने जो है एक बहुत ही प्यारी सी फोटो भेजी है. उसके बाद मुजीब जी ने जो है एक कप की फोटो भेजी है. यार ये जो चाय का कप है ये देखकर चाय पीने का मन सा हो गया मेरा. उसके बाद जो है हमें एक और फोटो आई है, ये आई है कार से. एंड नैंडोज जो है इनके नाम पर लिखा हुआ है. सर अपना नाम जो है एक बार प्लीज़ मुझे वापस बता दीजिएगा. बाकी थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए. बाकी मैं आपको बताने वाली थी एक वर्कआउट रूटीन के बारे में, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमें उस पर डिटेल में बात करनी चाहिए. वैसे ये जो मिलिट्री मैं बात कर रही हूँ जिस वर्कआउट की, सो इसका नाम है मिलिट्री कैलिस्थेनिक्स. एंड ये जो है मेरे सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है रोटेशन में आ रहा है. एंड ये जो है क्लेम करता है कि 7 मिनट्स का ये वर्कआउट रूटीन है, यानी एक्सरसाइजेस को इस तरीके से जो है इसमें रखा गया है कि आप जो है सिर्फ 7 मिनट्स का वर्कआउट हर रोज़ करेंगे तो आपको असर ज़्यादा दिखेगा. अब मुझे नहीं पता यार, देखो आप चाहे 7 मिनट्स करो 17 मिनट्स करो, लेकिन वर्कआउट ज़रूर से करो. एक ना एक एक्सरसाइज जो है ज़रूर आपको अपने पूरे दिन में करनी है, तो आप ज़्यादा हेल्दी रहेंगे. फिलहाल गाना जो है वाव आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास.
1: Say wow!

0: Trek. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
1: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव

0: तो ये फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जो है मूवी से आ गया था ये गाना आपके रेडियो सेट्स पर। टाइटल ट्रैक है, बहुत ही अमेजिंग वाला टाइटल ट्रैक है। हाँ जी, और ये है आपकी कशिश शो, आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ मैं, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अब देखो यार, ये जो मूवी थी ना फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये जो है मूवी में इस गाने से भी बढ़िया कुछ था, और वो था जूही चावला एंड शाहरुख खान की केमिस्ट्री। मतलब मुझे ना सबसे ज़्यादा आइकॉनिक डायलॉग अगर शाहरुख खान का रोमांटिक वाला कोई लगा है ना, तो वो यही लगा है जहाँ पे जूही चावला पूछती है कि एक बात पूछूं, तुम आदमी हो या बंदर, और शाहरुख खान कहता है कि तुमको क्या पसंद है। ओए होए, मतलब यार अगर कोई इतने प्यार से मुझसे बात कर ले ना, मैं तो यार अपने हिस्से की आइसक्रीम उसको देने को तैयार हो जाऊँ, क्योंकि देखो आइसक्रीम मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यारी है। वैसे मैं जो है किसी एक इंसान का बहुत स्पेशल मेंशन करना चाहती हूँ, मैं इदरीस जी का जो है मेंशन करना चाहती हूँ। इन्होंने इतनी खूबसूरत फोटो भेजी है, मतलब अगर आपको जो है कतर से प्यार है और अगर आपने ये फोटोज़ देख ली, तो आपको कतर से डबल ट्रबल प्यार हो जाएगा। सच में मैं जो है ये फोटोज़ डाउनलोड करके अपने यू नो स्टोरी पर लगा चुकी हूँ। इदरीस जी प्लीज़ अपना इंस्टाग्राम हैंडल मुझे जो है भेज दीजिए, ताकि मैं आपको टैग भी कर सकूं इन फोटोज़ पर। एंड अगर आप लोगों को भी ये फोटो देखनी है तो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जा सकते हैं, एंड मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर भी आप ये जो फोटो है ये देख सकते हैं कि इदरीस जी ने क्या भेजा है। एंड अमेजिंग वाले गाने तो आ ही रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाने इन्जॉय कीजिए। बाकी थोड़ी सी देर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल वीकेंड पर जो है क्या कुछ खास किया जा सकता है मेरा शो सुनने के अलावा। ठीक है, फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सनी सनी आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, एकदम मौसम अप्रोप्रिएट गाना, इसे वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

वापस ये कहने के लिए मैं आ गई हूँ कि मैंने ये मूवी रिविजिट की, यानी सलाम नमस्ते एक बार फिर से देखी, एंड मुझे जो है इस बार थोड़ी ज्यादा रिलेटेबल लगी, क्योंकि प्रीति जिंटा एक आरजे रहती है एंड सैफ अली खान बहुत क्यूट है. वेलकम 106.3 रेडियो पर, मैं हूँ आपकी गजश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है.

श्रेया घोषाल और अरमान मलिक की आवाज में ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सा ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो आलिफ पर। And जी वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है शो, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, अभी जो है मुझे इमाद जी ने जो है एक बहुत ही प्यारा मैसेज जो है वो लिखा और जो है एक फोटो भेजी चाय के कप की, एंड उन्होंने कहा कि कशिश आइए चलिए चाय पीते हैं। एंड मुझे लगा यार ये चाय जो है ये कितनी अजीब सी चीज़ है ना, मतलब कहीं पर हम किसी के घर जाते हैं तो वो हमसे यही पूछते हैं कि चाय लोगे, एंड कोई हमारे घर आता है तो हम उनसे यही बोलते हैं कि क्या चाय बना दें क्या, एंड कहीं जो है दोस्त से मिलने जाना होता है तो हम ये बोलते हैं कि चल भाई चाय पी के आते हैं, एंड ऑफिस में जो है जब टाइम हो जाता है जब बहुत स्ट्रेस होता है तो हम क्या बोलते हैं, चलो यार चाय हो जाए। एंड उसके बाद जो है हम जो है अलग अलग जगह पे जाते हैं, जहाँ पर हमें करक की है चाय की दुकान मिल जाती है वहाँ बोलते हैं कि यार रुक जाते हैं 2 मिनट जो है ज़रा चाय पी के करक पी के जो है आगे चलते हैं। सो चाय जो है ये 10 मिनट के लिए हम पीने के लिए रुकते हैं, लेकिन आधा घंटा एटलीस्ट उस चाय के साथ जो है चर्चा करके ही उठते हैं। सो चाय बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है, चाय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं यू नो टीम बिल्डिंग के लिए। सो एचआर जितने भी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी टीम बिल्डिंग एक्टिविटी करना चाहते हैं ना तो सबको टी पार्टी पे बुलाइए, टी पार्टी इज़ द बेस्ट पार्टी। मैं हूँ आपकी कशिश। फिलहाल जो है एक बहुत ही अमेजिंग गाना जो है कलंक मूवी से आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर। कृति सैनन ने क्या अमेजिंग परफॉर्म किया है इस गाने पर, आपको एक बार जो है ये गाना जो है अच्छे से फुल वाइब के साथ वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करना चाहिए। तो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय कीजिए। एंड बाकी हैप्पीनेस के बारे में एक बात जो है वो मैं आकर आपको बताने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड रहना। फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जीव बिंदास।

Mashuka gana apne enjoy kiya 106.3 Radio Alifat. मैं हूँ आपकी गजन शो, आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। वीकेंड पर क्या कुछ करा जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे थोड़ी सी देर में। लेकिन आप ऑफिस में भी तो फन कर सकते हैं, और इस बात पे जो है आपको यकीन दिलाने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैप्पीनेस लाउंज, जहां पर आप रेडियो ऑलिव की टीम को जो है अपने ऑफिस में इनवाइट कर सकते हो। एंड हम बहुत सारे फन गेम्स खेलेंगे, फन करेंगे, मस्ती करेंगे, एंड ऑफिस की वाइब को जो है अमेजिंग बना देंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि रेडियो ऑलिव की टीम और रेडियो ऑलिव के आरजेस जो है वो आपके ऑफिस में आए, तो आपको बस अपनी कंपनी को, अपनी वर्क प्लेस को जो है रजिस्टर करना होगा। एंड उसके लिए कुछ नहीं करना है ज्यादा, आपको बस 3311063 ये जो हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है जिस पर आप हमें रोज मैसेजेस करते हैं, उस पर जाकर बस HL लिखना है, हैप्पीनेस लाउंज लिखना है, एंड हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। देखिए यार, बस आपको हमें इनवाइट करने के लिए इतना सा ही तो काम करना है। सो जल्दी से फोन उठाइए 3311063 पर हमें मैसेज कर दीजिए HL। फिलहाल अमेजिंग वाला गाना ओ सोलमिया आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, जरा एंजॉय करो और कहते जाओ जियो बिंदास।

देखिए वीकेंड है तो ऐसी वाली फीलिंग आना तो लाजमी सी बात है, मतलब दिल का फिसलना बहुत आसान हो जाता है जब वीकेंड चल रहा होता है। शॉपिंग करने जाएं एंड किसी ड्रेस पे दिल फिसल सकता है, कहीं किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो किसी स्पेशल डिश पे दिल फिसल सकता है। तो वीकेंड का कोई भरोसा नहीं साहब, यहाँ पर किसी भी चीज पे दिल फिसल सकता है। लेकिन वीकेंड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरा द टेक शो, सो वो सुनने के लिए एक्साइटेड है या नहीं है आप? मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि वीकेंड पे भी आपसे बात करने को मिलेगा, सो काफी अच्छी बात है। वेलकम जी 106.3 रेडियो वाले पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, यूं तो हमें पता है कि कतर में ऐसी बहुत सारी अमेजिंग जगह है जहां पर जाकर आप अपना वीकेंड स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल जगहों की लिस्ट जो है वो मैंने बनाई है जो इस वीकेंड पे काफ़ी खास होने वाला है। सो अगर आप शॉपिंग के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं, सो आपको मीना डब्ल्यू फेना मार्केट जो है वहाँ आप जा सकते हैं, जहाँ पर आपको लोकल कतरी प्रोडक्ट्स जो है, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो देखने मिलेगा एंड वहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। सो 24 सितंबर से जो है ये शुरू हो रहा है अल हजम आउटडोर एरिया पे, एंड साथ ही में द इंटरनेशनल आइसक्रीम शो भी होने वाला है। सो फैमिली और बच्चों के लिए जो है काफ़ी एक फन एक्सपीरियंस होने वाला है, सो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। बाकी एक सर्वाइवल टिप मैं अगर आपको देना चाहूँ सो वो यही होगी कि ट्रैफिक और पार्किंग से बचने के लिए, क्योंकि काफ़ी QNCC के कॉन्सर्ट जो है वो भी इस वीकेंड पर होने वाले हैं। सो दोहा मेट्रो का ग्रीन लाइन जो है वो लेना सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन होगा। बाकी आपको इस वेदर का एडवांटेज तो मिलने ही वाला है, धीरे धीरे हम ठंडक की ओर बढ़ते जा रहे हैं एंड दिल को भी ठंडक जो है वो मिल रही है क्योंकि वीकेंड आने वाला है। सो वॉल्यूम बढ़ाकर अमेजिंग वाला हाई एनर्जी ट्रैक जो अगला आने वाला है उसे एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है, इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 12:10, दैट इज 12:10. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
2: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: Hi, I'm Nawazuddin Siddiqui and you're listening to Radio Olive.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट नाउ ओपन एट ऑल

0: बागी फोर मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। और बागी फोर जो है वो बिल्कुल वैसे ही आकर जो है चली गई जिस तरीके से चार दोस्तों के बीच में एक पिज्जा का बॉक्स आता है एंड वो खुलता है एंड पिज्जा आकर चला जाता है, बिल्कुल वैसे ही पता ही नहीं चला कि बागी फोर कब आई और कब चली गई। हाँ जी, मैं हूँ आपकी कशिश, जो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जहां पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार, कुछ लोग होते हैं जिनसे आप इतनी ज्यादा होप लगा के रखते हो कि वो चाहे कितना भी आपकी यू नो होप्स पे ना खरे उतरे लेकिन आपकी होप बनी रहती है। और इमरान हाशमी जी जो है वही इंसान है कि हम इन पे इतना यकीन करते हैं, इतना विश्वास करते हैं कि इनसे हम होप लगा के रखते हैं कि यार ये अच्छा काम करता है इंसान, इससे हम अच्छा काम करने की उम्मीद रखेंगे। सो इमरान हाशमी जी जो है अब एक यू नो गोट बन चुके हैं, गोट मतलब गोट नहीं मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एंड एक ओजी है ऑफ कोर्स बॉलीवुड के। सो उनसे जो है आवारापन टू जो है हमने बहुत होप करी थी उस मूवी के अच्छे होने की, लेकिन वो अच्छी नहीं निकली। लेकिन अब इसके बाद जो है एक नए गाने के साथ इमरान हाशमी जी आए जिसके बाद हमारी होप जो है वो वापस आ चुकी है। सो ऑब्वियसली इमरान हाशमी एंड हिमेश रेशमिया ये एक ऐसा कॉम्बो रहा है जो मेरे बचपन का, अगर मैं कुछ यू नो अपना म्यूजिक याद करूं बचपन का, सो ये कॉम्बो आ ही जाता है। एंड मैं काफ़ी शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ ये बात एक्सेप्ट करने में कि मुझे पहले ना जब मैं बहुत छोटी थी मुझे लगता था इमरान हाशमी एंड हिमेश रेशमिया सेम ही इंसान है। पर इनका जो एक नया गाना है अफसाना बनाया आपने, ये जो है अभी रिलीज हुआ है एंजेलिना डिसूजा, ओ माय गॉड इतनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है एंड इतनी क्यूट केमिस्ट्री लग रही है इमरान हाशमी एंजेलिना डिसूजा में, ऐसा लग रहा है मेरा बचपन वापस आ गया है। काश इन गानों की तरह जो है कोई मेरा बचपन एक्चुअली में वापस ला पाता तो मुझे जो है इस यू नो खराब गले के साथ काम नहीं करना पड़ता। वैसे देखिए आप लोगों का प्यार है बस जो मुझे जो है मतलब काम करने पे ऐसे यू नो मोटिवेट कर रहा है। सो आप लोग बस अपना प्यार मुझ पे बना के रखिए, बाकी कूल सॉन्ग ऑफ द आवर मैं आपको सुनाती रहूंगी। सो वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं.
2: अरे क्या हुआ इतनी खुशी किस बात की.
3: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं आपकी सेविंग का भी है. वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा. सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस. फ्रेश ग्रोसरी इलेक्ट्रॉनिक्स होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ. लुलु एनिवर्सरी बोनांजा ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स.
4: लुलु, where the world comes to shop.

सही तो कहा सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति जी ने कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, आपके बिना मैं क्या हूँ, मैं किससे बात कर रही हूँ या माइक ऑन करके अगर आप लोग मुझे जो है रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं हो तो। एंड आप लोगों के रिस्पॉन्सेस देखकर सुनकर बहुत ही मजा आ जाता है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार क्या होता है ना कि वीकेंड पर हम सारा काम जो है निपटा कर जब बैठते हैं कि यार अब कुछ कंटेंट देखते हैं, तो आधा टाइम तो यही जो है फिगर आउट करने में निकल जाता है कि आखिर देखा क्या जाए। सो मैं जो है आपकी मदद करने के लिए आ गई हूँ, आपको बताने के लिए आ गई हूँ कि क्या क्या है ऐसा जो आप जो है इस वीकेंड पे कंज्यूम कर सकते हो, देख सकते हो। एंड ये थोड़ा सा फन भी होने वाला है, मस्ती वाला भी होने वाला है एंड थोड़ा हटके भी होने वाला है। सो सबसे पहला पिक जो है वो है द मेहता बॉयज, बहुत ही अमेजिंग यू नो आपको ये मूवी लगने वाली है एंड फादर सर रिलेशनशिप पे है, बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, ये भी एक बहुत ही क्यूट सी मूवी है, ये भी आप ज़रूर से देखिएगा। धूमधाम यामी गौतम is amazing in this movie, so एक बार से ज़रूर से देखना, ये मूवी आपको easily OTT platform से मिल जाएगी। उसके बाद लॉगआउट मूवी जो है वो बहुत अच्छी है एंड बी हैप्पी एक मूवी है वो भी बहुत अच्छी है। और अगर मैं बात करूँ मेट्रो इन दिनों, ये जो है थोड़ा सा यू नो ट्रिकी सा एक पिक है, लेकिन लेकिन लेकिन ट्रस्ट मी थोड़ी सी आपको बीच में क्रिंजी लग सकती है। एंड अगर आप यू नो मेट्रो फर्स्ट वाली जो है उससे अगर इसे कंपेयर करेंगे तो ऑफकोर्स अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन एज अ नॉर्मल फिल्म अगर आप इसे देखेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। एंड लूडो ऑफकोर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको एक बार से ज़रूर से देखनी चाहिए। एंड अगर आप देख चुके हो पहले तो रीविजिट करो इन मूवीज़ को, हमेशा एक यू नो एक अच्छा वाला फील आपको आएगा। फिलहाल पाकीज़ा गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना इन्जॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास। Ooh, Sarah,

अवैध बशीर जी की आवाज में बहुत ही अमेजिंग वाला ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो वाले पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय कहने का, क्योंकि कल जो है शाम को 4 बजे मैं आऊंगी द टेक शो लेकर आपको एंटरटेन करने, टेक्नोलॉजी की बात करने, लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। तब तक आप अपना वीकेंड जो है वो इंजॉय कीजिए और बस बाकी गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा एंड रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को जाकर और सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जाकर फॉलो कर लीजिए। मुलाकात होगी अब कल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
4: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas. टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ
1: हाय एवरीवन दिस इज बेनी देओल हियर
2: ऑलिव रेडियो 106.3
1: जियो बिंदास

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास ओलिव म्यूजिक मैराथन एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: 5 हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे चलिए एक साथ बैठकर शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को, जहां पे गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए, 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदा।

0: is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे कहानी में बताना चाहूंगा जहां पे एक लड़के ने कंपनी को रिजेक्ट कर दिया। बात यह है कि एक लड़के को एक कंपनी में इंटरव्यू का कॉल आया था। बोला था कि सीईओ जो है उसका इंटरव्यू लेंगे, 2 बजे आपको आना है, 2 बजे आपका इंटरव्यू। ये लड़का 10 मिनट पहले पहुंच गया, करेक्ट 2 बज गए, इंटरव्यू का टाइम हो गया, मगर सीईओ का नामो निशान नहीं, कहां पे है वो, किधर है वो, किसी को नहीं पता। और सीईओ आए 70 मिनट बाद, यानी कि 2 बजे का इंटरव्यू था, सीईओ आए 3:10 में। ये बंदा उठ के चला गया वहां से और उसने मेल में लिखा कि मैं 70 मिनट वहां पे वेट करता रहा, आपने जिस टाइम पे बोला उससे 10 मिनट पहले मैं आया, 70 मिनट मैंने वेट किया, प्लस 10 मिनट जो मैं एक्स्ट्रा आया था वो भी, और उसको मिला के पूरे 80 मिनट में वहां पे बैठा रहा, आप आए, आपने अक्नॉलेज तक नहीं किया कि आप लेट हो गए। सॉरी बोलना तो दूर की बात है, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप सॉरी बोलोगे, बट एटलीस्ट एक्नॉलेज करना कि हाँ मैं लेट हो गया करके, ये कुछ नहीं किया। सो मैं ऐसी जगह पे काम नहीं करना चाहता जहां पे टाइम की वैल्यू नहीं है। अब देखिए ये चीज सही में हुई है नहीं हुई है ये तो नहीं पता, मगर इंटरनेट में इसके ऊपर जो है काफ़ी डिबेट चल रहा है कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं, सीईओ है वो इसलिए वो लेट हो गया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सही किया, बिल्कुल पॉइंट वाली बात कही है, टाइम की वैल्यू होती है, हर इंसान के टाइम की वैल्यू होती है, अगर 2 बजे इंटरव्यू बोला है तो लेट होना समझ में आता है, मगर लेट होने के बावजूद उस चीज़ को एक्नॉलेज ना करना इज़ अ रॉन्ग थिंग करके। आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है इस बारे में? 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे, और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-5613. Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM per. Jio Bindas. Olive
1: Recharge. This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलवे 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम बात कर रहे थे कैसे एक लड़के ने बाई मेल एक कंपनी को रिजेक्ट कर दिया। वैसे ही एक और लड़के के बारे में हम बात करना चाहेंगे। इस बंदे को जो है एक कंपनी में जॉब मिला, और उसे बोला था कि आपको जो है HP का लैपटॉप मिलेगा काम करने के लिए। तो उसने बोला कि मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, पिछले सालों से मैं मैकबुक ही यूज़ कर रहा हूँ, क्या मुझे मैकबुक मिल सकता है? तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो फिर उसने मेल किया कि आई एम रियली सॉरी, मैं आपका ऑफ़र जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बात यह है कि मैं इतने सालों से मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे एक विंडोज़ लैपटॉप यूज़ करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, और सिंस आप लोग ये अकोमोडेट नहीं कर पाओगे, और मेरे लिए मैं नहीं चाहता कि आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करें, इसलिए मैं ये ऑफ़र नहीं ले रहा करके। और इसमें भी नेटिजन्स ने जो है काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन दिया है। कुछ लोगों ने बोला कि बिल्कुल सही किया है भाई, क्योंकि एक उसने अपना जो स्टैंड है वो रखा, दूसरा कंपनी के लॉस को चेंज करने के लिए किसी भी तरीके से उसने फोर्स नहीं किया। उसने बोला कि आपकी पॉलिसी ये है, वेल एंड गुड, मैं उस चीज़ से अलाइन नहीं हो पा रहा हूँ, इट्स ओके करके। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं आजकल के जेंजी एम्प्लॉयज। मेरा एक टेक है इसमें, मैं यही है कि देखिए, वर्क प्लेस में जब तक हम अपने डिमांड्स नहीं रखेंगे, जब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि ये चीज़ें सही हैं या फिर ये चीज़ें चाहिए, तब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी। और बदलाव के लिए बोलना बहुत ज़रूरी है। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मुझे जो है एक मैसेज आया। मैसेज में मुझे दीपक जी ने लिखा है कि हेलो सुदेव जी, आपकी पहली वाली कहानी सुनी मैंने जहां पे एक लड़के ने जो है रिजेक्ट कर दिया कंपनी को उसे वेट करवाने के चक्कर में। देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर मानता हूँ कि टाइम की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि जो सीनियर लोग होते हैं, सुपीरियर लोग होते हैं, एग्जीक्यूटिव पोजिशन में जो लोग हैं, वो लोग कभी कभी अपने टाइम के हिसाब से दूसरों के टाइम की वैल्यू भूल जाते हैं। कभी जानबूझ के होता है, कभी कभी काम के कारण होता है, मगर टाइम की वैल्यू रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे, उस लड़के ने सही किया गलत किया ये तो मैं नहीं जानता, मगर मैं बस बता रहा हूँ कि टाइम की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही बात है, मैं भी दीपक जी आपसे शत प्रतिशत सहमत हूँ। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंसान का टाइम इंपॉर्टेंट रहता है। और रिसेंटली मैंने एक लेक्चर देखा था सैम मैरक्शॉ का, जहाँ पे वो रिटायरमेंट के बाद एक कॉलेज के 25th जुबली सेलिब्रेशंस में वो खड़े होकर बात कर रहे थे। तब उन्होंने बोला था कि 40 साल आर्मी में काम करने के बाद एक चीज़ मैंने सीखी है, वो है टाइम से आना, टाइम से जाना, पंक्चुअल रहना करके। और उसी के कारण उनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें भी पॉजिटिव हुई हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan and you're listening to

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। कल ना मैंने कहानी पढ़ी और मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ये कहानी है बहुत पुरानी, एक्चुअली ये फिक्शनल कहानी है। तो एक राजा था, राजा के तीन बेटे थे। अब टाइम आ गया कि राजा को जो है अपने तीन लड़कों में से किसी एक को जो है अपना हेयर बनाना था और राज्य जो है उसे सौंपना था। अब कैसे ये करे इन्हें समझ में नहीं आया, तो राजा ने क्या किया, एक फिक्सड अमाउंट डिसाइड किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये उन्होंने डिसाइड किया। बोला 500 रुपये तीनों बच्चों को 500-500 करके दिए। बोले कि मैं तुम्हें एक छोटा छोटा सा महल दे रहा हूँ, 500 रुपये तुम्हारे हाथ में, अब तुम्हें इसे कैसे सजाना है सजाओ करके, तुम्हारी मर्जी है करके। अब जो पहला वाला था वो बोला कि भाई 500 में कैसे इस महल को सजा सकते हैं। ये फ्रस्ट्रेट हो गया, इसने क्या किया, अपने उस छोटे से महल में कूड़ा कबाड़ भर दिया। और जो दूसरा बंदा था ये भी सोचा कि भाई 500 रुपये में कैसे हम महल को सजा सकते हैं, इसमें से तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो इसने बहुत ही सस्ते काम दाम लगा के जो है सजाने की कोशिश की, बट वो भी कुछ ज़्यादा काम नहीं आया। मगर तीसरा वाला जो था वो सोचने लगा कि भाई 500 है मेरे पास, मैं इन 500 में ऐसा क्या कर सकता हूँ कि लोग यहाँ पे ज़्यादा आए करके। उसने उस 500 को जो है थोड़ा स्प्लिट किया। कुछ पैसों में उसने कैंडल्स और थोड़े परफ्यूम खरीदे, परफ्यूम यानी कि बुखूर, ऐसी चीज़ें जो है वो खरीदी। और उसके बाद जो बचे कुछ पैसे थे उसमें से उसने एक छोटा सा बोर्ड बनवाया और बोर्ड में लिखा पीपल्स पैलेस करके। ठीक है, अब क्या हुआ, शाम के टाइम पे जब इस पैलेस को देखने के लिए जो राजा थे वो आए, तो उन्होंने पहले वाले का देखा पैलेस, वो बहुत ही बेकार था क्योंकि उसमें कूड़ा कबाड़ भरा हुआ था। उसके बाद दूसरे वाले में गए, दूसरे वाले में भी बहुत ऐसे लो क्वालिटी चीज़ें लगी हुई थी, क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आ रहा था। अब तीसरे वाले में हुआ अजूबा, तीसरे वाले के पैलेस में जब लोग आने लगे तो उन्होंने देखा कि भाई इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये कैंडल्स जला रखे हैं तो जो ग्लो है इवनिंग के टाइम में वो बहुत अलग आ रहा था, अच्छी खुशबू आ रही थी और उसमें लिखा था पीपल्स पैलेस। तो लोग आने लगे वहाँ पे, और जब लोग आने लगे तो वो खुद से चीज़ें लेकर आने लगे उसे सजाने के लिए, वहाँ पे वक्त बिताने के लिए। और राजा को समझ में आ गया कि मुझे ये राज्य जो है किसको सौंपना है करके। तो बेसिकली इस पूरे कहानी का आइडिया जो है वो यही है कि कभी कभी हमारे पास ना बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं आते, मगर जितनी भी चीज़ें आती हैं उनमें सबसे मैक्सिमम कितना हम रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं वो हमारे सोच पे डिपेंड करता है। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Humne laga aur ho ja recharge.
2: Olive Recharge.
3: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
2: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में। अब आप अपनी पुरानी gold jewellery चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं। सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही अचंभे वाली कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा जो एक्चुअली हुआ है। सूरत में जो है, एक बंदे ने अपने बॉस से सैलरी मांगी, मतलब उसके काम के पैसे, पगार जो है उसने मांगे और मना कर दिया। उस बंदे ने मात्र 10,000 रुपये मांगे थे जो उसका काम का था, मगर बॉस ने मना कर दिया। अब ये फ्रस्ट्रेशन में आ गया, इरिटेटेड हो गया, इसे गुस्सा आया। इसने क्या किया, रातों रात उनके फैक्ट्री में जाके उनके जो भी कंसाइनमेंट थे डिलीवरी के लिए वो सब जला दिए। यानी कि 10,000 के चक्कर में 24 करोड़ का जो है उन्हें लॉस हुआ। इवन दो उस बंदे को पुलिस ने पकड़ लिया है, और नेटिजन्स भी काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस दे रहे हैं कि बिल्कुल सही किया भाई, प्रॉपर तरीके से 10,000 रुपये दे देते तो इसकी दिक्कत नहीं थी। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत है। सही है, आपको क्या लगता है, आप जरा अपनी राय बताइए मुझे 3311063 पर। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas. Olive Recharge.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम राजकुमार राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम आपको एक चीज याद दिलाना चाहेंगे, वो यही है कि अगर आप अपने ऑफिस टाइम के दौरान मस्ती करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हंसना चाहते हैं, गेम्स खेलना चाहते हैं, रिचार्ज और रीएनर्जाइज होना चाहते हैं, तो फिर रजिस्टर कीजिए हैप्पीनेस लॉन्च के लिए। मैसेज कीजिए हमें 3311063 पर HL Space अपने कंपनी का नाम, क्योंकि हैप्पीनेस लॉन्ज में हम आपके वर्कप्लेस को विजिट करते हैं, फन करते हैं, गेम्स खेलते हैं, आपको रिचार्ज और रीएनर्जाइज करते हैं, और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुदेव रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewellery चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और बहुत ही हार्ट वार्मिंग येट थोड़ा सा सैड कर देने वाला एक फोटो मैंने देखा। एक्चुअली ये फोटो जो है 2016 में आया था, मगर अभी भी 10 साल बाद भी इस फोटो अगर हम देखें तो दिल में ना थोड़ा ऐसे कुछ भारी सा लगने लग जाता है, आंखें थोड़ी सी नम सी हो जाती है। सो बेसिकली 2016 में एक फोटो निकला था जहां पे दो एलिफेंट्स जिनको दो अलग अलग ट्रक में लेके जा रहे थे और वो हाईवे के दो रास्तों में स्प्लिट हो रहे थे। स्प्लिट होने से पहले उन्होंने अपने ट्रंक से जो है एक दूसरे को ऐसे होल्ड करके रखा था और बहुत सारे लोगों ने जो है वो वाला गाना भी बोला रेफरेंस के इसमें, जो हमने फास्ट एंड फ्यूरियस में देखा था इट्स बीन अ लॉन्ग डे करके, जैसे दो लोग ऐसे अलग अलग रास्तों में जाते हैं वैसा ही कुछ हो रहा था। 10 साल पहले ये फोटो आई थी, मगर 10 साल बाद भी इस फोटो को देखकर थोड़ा सा ना दुख महसूस होता है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि एलिफेंट्स जो है काफ़ी इंटेलिजेंट एनिमल है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल है और काफ़ी सोशल बॉन्डिंग रखने वाला एक एनिमल है। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: is brought to you by
1: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे जो है आपके साथ एक बहुत ही प्यारी सी बात हम शेयर करना चाहेंगे। सो रिसेंटली मैं ऐसे ही बैठ के यूट्यूब में ना पुराने गाड़ियों का वीडियो देख रहा था, ठीक है, और मैंने देखी एक गाड़ी मारुति सुजुकी 800, जो इंडिया की फैमिली कार हम बोल सकते हैं, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने में उस गाड़ी का रोल बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो मैं बैठ के ऐसे देख रहा था और मैंने सोचा कि यार सोच के देखिए, उस एक ज़माने में जब एक गांव में शायद एक इंसान के पास गाड़ी होती थी या फिर एक इंसान के घर में टीवी होता था, कनेक्शन आता था जहाँ पे सब लोग मिलके बैठ के शोज देखते थे या फिर जो भी सीरियल आता था वो देखते थे, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हमारे लाइफ में कम था, मगर उसी के साथ साथ लोगों का आपस में कनेक्शन बहुत ज़्यादा था। आयरनी की बात यह है कि नोकिया का टैगलाइन है कनेक्टिंग पीपल, मगर फोन के आने के बाद लोगों का कनेक्शन जो है फोन के थ्रू ही होने लगा है, ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन तो बहुत कम हो गया है। और ये जब मैं सोचता हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है यार काश ऐसा होता कि पहले के टाइम जैसा इमोशनल और ह्यूमन कनेक्शन अभी भी हम बना पाते, मगर टेक्नोलॉजी वैसी की वैसी ही रहती, यानी कि अभी जैसा है वैसा ही रहता, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी ने लाइफ को जो है बहुत सिंपल कर दिया है, कन्वीनियंट कर दिया है। तो कन्वीनियंस के आने के बाद हमारे पास मौका लगता है कि हम लोगों से मिले, बात करें, कनेक्ट करें, मगर ये कनेक्ट कहीं ना कहीं मिसिंग है। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
1: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
2: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन। गराफा शॉपिंग डेज,
3: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स, मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। ऑलिव रिचार्ज, रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
4: This hour is brought to you by
5: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो, बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर radioolive.qa सर्च कीजिए। वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, और फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और आप हमारे कंटेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें सुनते हुए स्टोरी बनाकर डालिए इंस्टाग्राम पे, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कई सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं, आप उसके साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, आपको जीतने के मौके मिलेंगे, वो भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं.
2: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
3: अरे लुलु का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलु का नहीं आपकी सेविंग का भी है. वेलकम टू द लुलु एनिवर्सरी बोनांजा. सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ. लुलु एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग.
4: लुलु, where the world comes to shop.
5: ले लगा और हो जा रिचार्ज.
0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par, Jio Bindas.
5: Olive Recharge.
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewellery चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari Mall में.

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबा गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो चुके हैं। मगर जाने से पहले यही दरख्वास्त है आपसे कि अब अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास। रेडियो

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: ये गाना
2: करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600+ पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन। गराफा शॉपिंग डेज।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदा।

हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई कैसा इंसान होता है जिस दिल्ली तुम सब कुछ करते हो पर उन्होंने थोड़ी कदर नहीं होती। मैं यार इस जोड़े हो कितना दिखी आज जल्द सच्ची अगाल सिमरन कौर है तोड़े नाल मेनू कदर है गिये तोड़ी यार और हैप्पी वीकेंड है। अकेली नहीं आई हूँ, वादे के मुताबिक वीकेंड को

लोगों के लिए और बताओ कैसा रहा आपका आज का दिन, उसके बारे में बताने के लिए आपके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेजने के लिए नंबर दो, आपको पता है नहीं पता तो बता देती हूँ यार 3311063। चलिए हो जाते हैं लापता, लेकिन मेरे साथ

0: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लेबनी एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलू स्टोर्स में।
1: हाय, मैं हूँ विवेकानंद ओबेरॉय। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव। जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: cad iar. Hai, hai. स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है और आपके लिए तो क्या ही बोलूं,
1: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहें।
0: देखो अगर आज आपका हैप्पी वाला बर्थडे है तो प्ले कर रही हूँ एंड इट्स वीकेंड ऑफ कोर्स। बताओ आपके वीकेंड के क्या प्लान है, किसका क्या क्या प्लान है, घर रहने का प्लान है, बाहर जाने का प्लान है, ओवरथिंकिंग का प्लान है, वो मत करना दोस्त। देखो यार लेकिन या आई नो ये अपने आप हो जाती है, आप चाहे जितना मर्जी रोक लें, अगर यू नो ये ओवरथिंकिंग है ना आपके ऊपर कभी भी आके जो है वो डेरा बसा सकती है। तो आप अपने आप को उस तरीके से रखिए कि आप वीकेंड पे सिर्फ इंजॉय करें, ठीक है। तो इंजॉय करना ज़रूरी है, चाहे वो आप अपने आप में इंजॉय करें, बाहर जाके इंजॉय करें। लेकिन मैं आज कहाँ पे जा रही हूँ इंजॉय करने के लिए वो भी आपको बताऊंगी। थोड़ा सा इंतजार करिए और बताओ क्या हाल है, सब ठीक है लाइफ में, खुश रहा करो यार। सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
3: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: रिश्ता, व्हाट अ ट्रैक यार, स्पेशली अगर आप ड्राइव पे हो तो. स्टूडियो की घड़ी पे
1: टाइम चेक, टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय दानातल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर, सुखवा के अलखोल.
0: अरे हाँ, सभी कहते हैं गाने हैं, देखो 70s, 80s, 90s के गाने के. सो ये ऐसे गाने हैं कि इनके हमको पूरे पूरे गानों के लिरिक्स आते हैं, लेकिन समझ लगता रहा यार कैसे आते हैं. ये हमारे पेरेंट्स का थैंक यू है, क्योंकि घर पे जब चलते रहते थे तो हमको आइडिया नहीं था कि हमको ये लिरिक्स जो है वो याद हो जाएंगे. सो कल आपने इंटरव्यू सुना होगा, है ना, जिसमें प्रियंका जी, आलोक जी, मुख्तार जी जो है थे वो आए थे. धरोहर जो है वो आज सुरों की अमर कहानी होने वाला है, है ना. ये एक लाइव ऑर्केस्ट्रा इवेंट है, तो अगर आपने इसकी टिकट जो है नहीं बुक करी अभी भी, आपके पास ऑप्शन है, गो एंड चेक अगर क्यू टिकट्स पे आपको टिकट जो है वो मिल जाती है. सो आज रात ये 8 बजे होने वाला है, सो इसको जरूर जो है वो जाइएगा, देखिएगा और मिस मत करिएगा, क्योंकि भाई साहब म्यूजिक का माहौल जो है ना इस तरीके से इन गानों के साथ, जो एवरग्रीन गाने हैं बॉलीवुड के, उनके साथ जब सजता है ना तो मजा आ जाता है यार. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास.

अर्जुन पटियाला से आप ये गाना सुन रहे थे। आई पटियाला दी याद आ गई यार। मेरे तो थोड़े से खर्च कर लिया, अगर मेरे नखड़े थोड़े सह लिया, अगर नखड़े नहीं नखरे सिमरन कौर।

मौसम की अपडेट ये है, मौसम कहता है कि 35 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 37 डिग्री सेल्सियस है एंड विंड जो है 12 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है, ह्यूमिडिटी है 58% एंड आज का मिनिमम टेम्परेचर होने वाला है 31 डिग्री सेल्सियस। सो या फ्राइडे को यार थोड़ी सी फ्राइडे और सैटरडे को थोड़ी सी हीट दिखा रहा है टेम्परेचर हाइएस्ट, बट या अब मैश करो यार, अभी तो फिर भी नॉर्मल हो गया, शाम में मजेदार माहौल है। नसीला, नसीला, आहा। नसीला, नसीला, नसीला, नसीला।

0: Olive. 106.3 FM.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करे डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: हाय मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ
7: Zabardast evening. Make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just feel

0: एक्सेस।
1: सिमरन कौर है आपके साथ। मोहब्बत यार क्या होती है ये कुछ चीजों से पता लगता है यार। मैं एक यू नो न्यूज पढ़ रही थी, जॉर्जिया का एक बंदा था, ठीक है, वो अपनी वाइफ को खो देता है, लेकिन अपनी वाइफ को खोने के बाद भी उस बंदे में इतना ज्यादा प्यार रहता है कि वो हर रोज अपनी वाइफ की फोटो साथ में लेके जाता था और लंच डेट पे जाता था। हाई साहब, ऐसा प्यार जो है लाइफ में कहाँ मिलेगा यार। यार प्यार ना मुझे लगता है एक बहुत ज्यादा ऐसे अपने ऊपर थोप दी गई है चीज की, यार लाइफ में ना कोई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनटिल अनलेस आपका किसी के साथ कनेक्शन नहीं बैठ रहा, वाइब नहीं बैठ रही, अपने आप को अगर आप फोर्स करके उस कनेक्शन में उस रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर जो है ना सामने वाले की लाइफ भी खराब होती है, अपनी लाइफ भी खराब होती है। लेकिन अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन बैठ गया तो भाई उससे ब्यूटीफुल चीज, उससे जन्नत वाली चीज कोई है नहीं है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं.
2: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
3: अरे लुलू का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलू का नहीं आपकी सेविंग का भी है. वेलकम टू द लुलू एनिवर्सरी बोनांजा. सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ. लुलू एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग्स.
4: लुलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

रहा है 100 किलो वाले 6:32 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। हैप्पी वीकेंड। एक नंबर गाने जो हैं आप लोगों के लिए बज रहे हैं, लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने गाने मैसेज करके कि यार ये वाला गाना बजा दो, वो वाला गाना बजा दो। देखो यार, आप मुझे इस तरह से मैसेज करके पिघला नहीं सकते हो। मैं किस तरीके से पिघलूंगी मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपका गाना फिर प्ले करूंगी। आपको गाना वॉइस नोट पे भेजना होगा, हे सिमरन, और अपना गाना थोड़ा सा एक आध लाइन आपको गुनगुनानी पड़ेगी, और उसके साथ एक आपको ये भी करना है कि भाई गाना दर्दीला नहीं होना चाहिए। दुनिया की जिंदगी में बहुत सारा दर्द है, हमको गानों के थ्रू और दर्द नहीं देना। अगर दर्द गानों में चाहिए आपको तो ऐसा ढींचक वाला गाना होना चाहिए, ताकि वीकेंड के हिसाब से माहौल जो है ना वो आपका सेट रहना चाहिए। बस वॉइस नोट भेजिए, गाइए थोड़ा सा और भेज दीजिए 3311106।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी। सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
4: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ऑटो पायलट पे रहता है, मतलब ऐसा बोरिंग बिहेव करता है कि मतलब अपनी तरफ से कोई क्रिएटिविटी बंदे की लगी नहीं रही, जैसा चल रहा है वैसा ही प्रिडिक्टेबल बिहेवियर रहता है उसका. सो या एनपीसी नॉन क्लियर कैरेक्टर. 6:52 स्टूडियो की घड़ी पे सिमरन कौर है आपके साथ. मैं चक्को फिर फट्टे थे कहते रहो जियो बिंदास. मैंने राइम कर दिया यार इस बार. चलो फिर अगला गाना कौन सा होने वाला है? लेकिन उससे पहले एक और गाना आएगा, उसके बाद ये आएगा.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

मैं क्या जी सुनियो कि दादी की हाल चाल। आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, करेगा मैं क्या जी सुनियो कि दादी की हाल चाल। सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तोड़े नाल। और ये फिल्म का नाम हर दिल जो प्यार करेगा पहले बिल्कुल नहीं था। इस फिल्म का नाम रखा गया था चंद्रलेखा। अब चंद्रलेखा जो था वो एक साउथ इंडियन नेम था, तो वो नॉर्थ इंडियन मूवी में फिट नहीं आना था ये टाइटल। इसका नाम जो था वो चेंज कर दिया गया है ना। सो इसमें दो बिगेस्ट सुपरस्टार शाहरुख खान एंड सलमान खान बिल्कुल लास्ट सीन में इकट्ठे थे। लेकिन ये जो गेस्ट अपीयरेंस शाहरुख खान ने की थी, ये पहले संजय दत्त को भी ऑफर हुआ था, लेकिन somehow ये शाहरुख खान ने ही रोल किया। लेकिन प्रीति जिंटा का जो रोल था वो तब्बू ने पहले साइन किया था, लेकिन उसके बाद ये प्रीति जिंटा के पास रोल आ गया था। एंड इस फिल्म से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें जो कि मैं आपको वापस लौट के बताती हूँ। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कर, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
1: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह.
2: गुलराज सिंह
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3.
2: जियो बिंदास.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
5: आरजे सिमरन के साथ.
0: Zabardast evening make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो है हर दिल जो प्यार करेगा। करिश्मा कपूर ने इस रोल को साइन किया, उसने भी इस रोल को जो था वो छोड़ दिया। लेकिन इस फिल्म की स्टोरी जो थी वो एक पाकिस्तानी ड्रामा तुमसे कहना था से इंस्पायर्ड थी। एंड अगर बात करें अमीषा पटेल की, तो उनको भी ये रोल जो था वो ऑफर हुआ था, बट ड्यू टू कहूना प्यार है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाई, तो फिर ये रोल आया फाइनली प्रीति जिंटा के पास। और ये अनऑफिशियल रीमेक थी एक हॉलीवुड फिल्म की, वाइल यू वर स्लीपिंग, जो कि 1995 में थी, जिसमें जेंडर रोल रिवर्स कर दिए गए थे। सो या ये थी इस फिल्म से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। अभी वापस लौट के एक बहुत जरूरी और बहुत खास बात करेंगे रियलिटी चेक में। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास एंड हैप्पी वीकेंड।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ।
4: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज को बहुत हल्के में लेते हैं।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: जरूरी है इनका हाल पूछना भी। बहुत सारे चेहरे देखे होंगे जो कि हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उनको सैड रहना अच्छा नहीं लगता। मैं भी एक ऐसा ही कैरेक्टर हूं जो कि मतलब कभी मैं सैड रहना नहीं चाहती, चाहे मेरे अंदर जितना भी बड़ा यू नो तूफान चल रहा हो, जितनी भी बड़ी मर्जी प्रॉब्लम चल रही हो। बट क्या होता है कि आजकल हर कोई अपनी जिंदगी में दुख जो है लेके घूम रहा है। अगर आप भी ऐसी गोभी ऐसी शक्ल बना के रखोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला और परेशान हो जाएगा। और अगर कोई किसी से यू नो कुछ शेयर भी करना चाहता है तो आपकी शक्ल देख के वो शेयर ही नहीं करेगा। और ऐसे लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। उनको लगता है सामने वाले को कि यार ये तो खुशी रहते हैं, इनकी लाइफ में तो बढ़िया है, इनकी लाइफ में तो क्या ही दिक्कत होगी यार। अदर डे आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, तो मतलब उसको भी ये लगता है कि यार मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यार इंसान है हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, बट एक तरीका होता है लाइफ को जीने का, जिंदगी को जीने का, कि आप हर जगह पे अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो हर किसी के सामने नहीं रख सकते हो। ये आपकी समझदारी होती है। कहते हैं ना हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई दुख नहीं हैगा, दुख सारे हुआ, बट सब दा जीण दा तरीका अलग अलग होंगे। सो जो चेहरे हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, उनसे भी हाल जो है पूछ लेना जरूरी है। जरूरी नहीं है आपके अंदर जो चल रहा है आपकी जिंदगी में, अगर आपने यू नो दिखा दिया है आपसे नहीं मतलब हाइड आप कर पाते हो तो आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है। आई एम श्योर आपकी भी होगी, बाकी लोगों की भी होती है यार, जो चेहरे मुस्कुराते रहते हैं। सो यार सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास। एंड बाकी मैं तो यही कहूंगी कि यार सिचुएशन चाहे कैसी भी, हो मतलब वो निकल जाती है यार, खुश रहो। इसीलिए कहनी है वापस लौट के नेम गेम खेलने वाली, तो तैयार हो जाओ।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: एक सवाल पूछूं, शॉपिंग में सबसे अच्छी फीलिंग क्या होती है?
2: जब बिल देखो और लगे कि इतनी बचत।
3: तो इस फीलिंग के लिए पहुंचिए गराफा शॉपिंग डेज में 24 से 27 सितंबर, नेस्टो हाइपरमार्केट अलगराफा। कई प्रोडक्ट्स पर 50% से ज्यादा ऑफ, मैसिव ऑफर्स और अनबीटेबल डील्स और 600 प्लस पार्किंग स्पेस भी, सिर्फ 4 दिन गराफा शॉपिंग डेज।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
5: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

चलो दोस्तों अब अपना अपना नाम मुझे बता दो। बिल्कुल आपका नाम मैं रेडियो पे बोलूं तो आप क्विकली अभी के अभी अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के भेजिएगा। चलिए अब नाम पढ़ने जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। नबीउल्ला जी, किसी ने बॉस लिख के भेजा, खुद को बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपका नाम भी तो होगा ना सर, बॉस सर। सो इदरीस जी, थैंक यू सो मच। अहमद जी, थैंक यू सो मच। शांतनु जी, थैंक यू सो मच। मुजीब जी, थैंक यू सो मच। अबरार जी, थैंक यू सो मच। आसमा, थैंक यू सो मच। योगिनी जी, थैंक यू सो मच। यासिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। जुल्फी जी, थैंक यू सो मच। संधु जी, थैंक यू सो मच। शशिकांत जी, थैंक यू सो मच। प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। दीपक जी, थैंक यू सो मच। राहुल जी, थैंक यू सो मच। लतीफ जी, थैंक यू सो मच। कुलदीप जी, थैंक यू सो मच। जुनैर जी, थैंक यू सो मच। गुरचरण जी, थैंक यू सो मच। जुहेर जी, थैंक यू सो मच। हमजा जी, थैंक यू सो मच। खेमराज जी, थैंक यू सो मच। क्विकली सिर्फ और सिर्फ नाम लिख के भेजिए 3311063 पर। अल्ताफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। सौजन्या जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। फैजल जी, थैंक यू सो मच। इस्माइल जी, थैंक यू सो मच। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए, अब आपको पता है ना आपको क्या करना है। आपको थैंक यू लिखना और अपना फेवरेट वाला इमोजी बनाना है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार.

0: सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतार। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
2: This is Amaira Dastoor on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: बात है दोस्तों, वीकेंड वाली नाइट है, मजे तो हो रहे हैं। देखो कल हमारी टीम जो थी वो एक जगह पे गई थी हैप्पीनेस लाउंज के लिए, और वापस आके मैंने हम सब पूछते हैं कि कैसा रहा हैप्पीनेस लाउंज। तो कल जहाँ पे गए थे दे वर सो हैप्पी और बहुत सारे गेम्स खेली, फन किया। एंड जब आप हमेशा काम काम काम अपने वर्क स्पेस पे करते रहते हो, वही तो है कि आपको काम ही करना है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर अगर फन हो जाए, क्योंकि हर ऑफिस हमारे रेडियो की तरह नहीं होता है कि हम 24 घंटे फन करते रहते हैं यार। यहाँ पे जितनी बार भी ऑफिस आएंगे तो हम ऑफिस में हमारा फन जो है वो काम के साथ साथ चलता रहता है, लेकिन बाकी ऑफिस में ऐसा नहीं होता है। तो हम ये ट्राई करते हैं क्रिएट करने का वो फन टाइम्स जो है वो काम से आपको थोड़ा सा हटके मिले। तो इसके लिए हैप्पीनेस लाउंज जो है हम लोगों ने स्टार्ट किया है। सो इसमें आप किस तरह से आपकी कंपनी, आपका ऑफिस जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके ऑफिस में या आपकी कंपनी में आए फन करने के लिए, मजे करने के लिए कुछ टाइम के लिए, तो आप हमें एक मैसेज भेज सकते हैं। हैप्पीनेस लाउंज लिखिए, HL भी लिख सकते हैं, हैप्पीनेस लाउंज भी लिख सकते हैं, अपने नाम के साथ भेज दीजिए 3311063 पर। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ.
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद. बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
4: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

आज आपने देखा होगा कि रणबीर कपूर की एक जख्मी डॉले वाली फोटो बड़ी वायरल हो रही है। संजय लीला भंसाली ने उनकी आने वाली फिल्म लव एंड वॉर का फर्स्ट लुक जो है वो रणबीर कपूर वाला वो जो है वो लॉन्च किया है। सो यस, ये एक रोमांटिक वॉर ड्रामा फिल्म जो है वो होने वाली है। ये 2007 के बाद संजय लीला भंसाली के साथ उन्होंने जो सांवरिया में काम किया था, एक्टिंग में डेब्यू किया था, उसके बाद ये फर्स्ट कोलैब होने वाली है डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ। और इस फिल्म में आलिया भट्ट, विक्की कौशल भी होने वाले हैं और ये फिल्म जो है वो अगले साल 21 जनवरी को रिलीज होने वाली है। सो या अलग लेवल पे जो है वो ये फिल्म हमको देखने के लिए मिलेगी। सो वेट करते हैं, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: यार मैं कब से नोटिस कर रही हूँ सब लोग ना बहुत खुश लग रहे हैं।
1: अरे क्या हुआ, इतनी खुशी किस बात की?
2: अरे लुलू का एनिवर्सरी सीजन जो आ गया, और इस बार सेलिब्रेशन सिर्फ लुलू का नहीं आपकी सेविंग का भी है। वेलकम टू द लुलू एनिवर्सरी बोनांजा। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर स्पेशल ऑफर्स और न्यू प्राइजेस, फ्रेश ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एसेंशियल और शॉपिंग के लिए बहुत कुछ। लुलू एनिवर्सरी बोनांजा, ज्यादा शॉपिंग ज्यादा सेविंग।
3: लुलू, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।
4: रेडी
5: टू लर्न,
4: टू प्ले, टू ग्रो।
6: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
7: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स।
6: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
9: आरजे सिमरन के साथ।
10: Zabardast evening, make you drive golden with.
11: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

हाँ जी दोस्तों, फिर सिमरन कौर की ऐसे गली माने का टाइम आ चुका है। फिर बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन वीकेंड पे एक टिप आपको दे रही हूँ, ओवर थिंकिंग मत करिएगा। आपको बाहर जाना चाहिए, आपको घूमना फिरना है घूमिए फिरिए, घर पे रहना है घर पे रहिए, लेकिन जब अकेले रहेंगे तो ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। बस खुश रहो यार, कुछ देखते रहो, कुछ नेटफ्लिक्स पे देख लो, अच्छा खा लो, अच्छा पका लो, घर का काम कर लो, कपड़े वपड़े सॉर्ट कर लो, लॉन्ड्री कर लो, लेकिन अकेले जब आप रहते हो ना तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, बहुत सारे लोग ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं और फिर सैड हो जाते हैं, और वीकेंड पे सैड होना अच्छी बात नहीं है यार। लुक हु इज टॉकिंग, सिमरन कौर। चलो अभी के लिए खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर्किलो।

से मिलाता, चेहरे पे तुझे हाथ से खिलाता, जो भी बोला वो हक से निभाता, तुझे चाहता तुझे जाता, चेहरे में मेरी माँ से मिलाता, चेहरे पे तुझे हाथ से खिलाता, जो भी बोला।

pay. Club Olive. Club on radio. 6.3 FM.

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद

106.3 FM. You're listening to Club Olive.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम यू आर लिसनिंग टू क्लब

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

Radio Olive 106.3 FM. You're listening to Club Olive.

Club Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।